एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। श्रोतो, इस समय सुबह के 5:58 और 29 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

हम अपना सारा जीवन आनंद और खुशी की खोज में लगा देते हैं और इसे पाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हमें सच्ची और स्थायी खुशी नहीं मिलती। हम सोचते हैं हमारे पास खूब पैसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे, इसलिए हम सब खूब मेहनत करके ढेर सारी धन दौलत कमाते हैं, सिनेमा देखते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, किंतु फिर भी हमें स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता। जब तक हमारा मन मोह माया की उलझनों में उलझा रहेगा तो ये थोड़ी बहुत बाहरी आनंद और खुशी तो देगा, लेकिन आंतरिक रूप से हमें तृप्त नहीं कर पाएगा। सच्चे सुख का स्रोत हमारे भीतर है। जब अंदर बैठे परमात्मा से हमने बातचीत करना शुरू कर दी तो समझो बाहरी प्रलोभनों से हम दूर होते जाएंगे। मन में संतोष, आत्मिक सुख, हमें ये सब प्राप्त ऐसे ही होगा।

वक्त बनाने वाले परमपिता को हम अपना वक्त देते हैं तो हर खुशी हमारे पास अपने आप ही दौड़ती चली आती है। जिस तरह चुंबक के आकर्षण से लोहा उसके पास खींचा चला आता है, उसी प्रकार परमात्मा और भक्त का संबंध भी है। परमात्मा उस लौ के समान है जो खुद जलकर हमारे जीवन में पसरे अंधेरे का नाश करते हैं। मुश्किल पलों में जबरदस्त संबल देकर हमें सकारात्मकता से जोड़ते हैं, क्योंकि सकारात्मक मन ही सहज रूप से शांत और प्रेरणादायक होता है।

खुद के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो हमें किसी भी व्यक्ति की सलाह या मशवरे की आवश्यकता नहीं होती। बस थोड़ी देर आंख बंद करके जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का आभास हमें हो जाता है। कुछ इन कर्मों को मान लेते हैं और सही राह पकड़कर जीवन में अग्रसर होते हैं, अपने आगामी जीवन को संवार लेते हैं। लेकिन जीवन में कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो बुरे कर्म करके स्वयं मुकर जाते हैं, इनकार करते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनके कर्मों का खाता परमात्मा के पास पूर्ण रूप से लिखा जा रहा है, क्योंकि प्रभु की नज़र से कोई भी जीव बच नहीं पाता।

प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं।

जिस मन मंदिर में प्रभु के शब्द द्वीपक के द्वारा आत्मिक जीवन का प्रकाश हो जाता है, उस मन मंदिर में आत्मिक गुण रत्नों की बहुत सुंदर कोठरी खुल जाती है, जिसके कारण जीवन में पसरे अंधकार का नाश हो जाता है। प्रभु शब्द के दीपक की रोशनी में जब अंदर बसते प्रभु का दर्शन होता है तो तेरी मेरी वाली सब सुध भूल जाती है। जैसे ताने और पेटे के धागे आपस में मिले हुए होते हैं, उसी प्रकार प्रभु स्नेह में सुध बुध खो जाती है। तब केवल मन मंदिर में वह सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा ही दिखाई देते हैं।

श्रोताओ, ये तो थी वंदना कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना। 6:40 हुए हैं। आकाशवाणी धर्मशाला से अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना और आज आप सुन रहे थे भाग 118। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में, 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम शुभ प्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10:00 तक आप सुन पाएंगे। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों की। 11:30 पर जय हिंद गीतमाला प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनो सखी। महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर जिला की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से 5:00 तक और 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। संध्याकालीन भजन आप सुनेंगे 5:10 पर। 5:30 पर कार्यक्रम युवा मंच पेश किया जाएगा और आज आप सुनेंगे मेरी पसंद। 5:55 पर कार्यक्रम

0: 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से हिमदर्शन कार्यक्रम रिले किया जाएगा। 9:30 पर संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्याम यात्रायाम स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान मार्गान अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरंतर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 बिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीयसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादूननगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदम् ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परंपरा अस्ति, अपितु राष्ट्र सेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा HD कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तं, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे US नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य MT सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्या तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिंदूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणां असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकास पर्यावरण व्यवस्थायाः वर्धमान शक्तेः परमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोग

0: प्रयोगशालायां उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीय रात्रौ प्रचंड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं च अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Setabella off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Chartered Affairs in New Delhi. President Draupadi Murmu will review the passing out parade at the Indian Military Academy, Dehradun, today. This year's passing out parade is said to be historic, as for the first time, women candidates will march alongside their male counterparts. In this grand ceremony, more than 500 gentlemen and lady cadets will take the first step and, I beg your pardon, will take the final step and be commissioned as officers in the Indian Army. The passing out parade of the Indian Military Academy is not merely a military tradition, but also marks the beginning of a new journey for young officers dedicated to serving the nation. Minister of State for External Affairs, Dr. Kirti Vardhan Singh, has said that Shanghai Cooperation Organization is not merely a regional grouping, but a vital link connecting India with its historical and civilizational partners across Eurasia. In his intervention at the SCO International Conference in Tajikistan, the MOS said, India's vision for cooperation within the SCO is guided by Prime Minister Narendra Modi's framework of security, connectivity and opportunity. He emphasized that Central Asia occupies a significant place in this vision. He added that it serves as a key node for enhancing regional connectivity and fostering greater economic integration among nations at the strategic crossroads of Eurasia. Dr. Singh said India is firmly committed to fight against terrorism in all its forms and manifestations, together with its partners from Central Asia. Defence Minister Rajnath Singh asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation El Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. Inaugurating the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex in Hyderabad, the Defence Minister said that systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Mr. Singh emphasized that strength is essential for peace and that self-reliance is most reliable foundation for that strength. Railways Minister Ashwani Vaishnaw held a high-level review meeting with senior officials of Indian Railways on the Railway Recruitment Board RRB recruitment process. During the meeting yesterday, Mr. Vaishnaw emphasized the need for a more transparent, accurate and technology-driven system. He also reviewed the progress made in shifting departmental examinations to computer-based test mode and said that more tablet-based examinations should be introduced to make recruitment faster, efficient and user-friendly. Cabinet Secretary Dr. T.V. Somanathan has reviewed the preparedness for the NEET re-examination in a meeting with the Director General, National Testing Agency, NTA, Abhishek Singh. During the review, the Cabinet Secretary emphasized the need for ensuring a smooth, transparent and secure conduct of the re-examination through close coordination. In badminton, India's PV Sindhu will face world champion Akane Yamaguchi of Japan in the women's single semi-finals of the Australian Open in Sydney today. The third-seeded Indian booked her place in the last four with a commanding victory over Chen Shuzhou in just 27 minutes in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुबह सुहानी।
5: सुबह सुहानी।

0: इस सुहानी सी सुबह में आप सभी से बतियाने के लिए, बातचीत करने के लिए, गीत संगीत के साथ आपका मनोरंजन करने के लिए हम स्टूडियोज में हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को हमारी ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज का ये अंक आप सुनेंगे पवन शर्मा के साथ। कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत कुछ अच्छे से विचार से की जाए तो दिन सारा अच्छे से गुजरता है। तो चलिए सुनते हैं आज का सुविचार।
1: आज का विचार।
0: कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब कमाई के ही रूप हैं।

जी बिल्कुल, जीना क्या है प्यार बिना, और जीने के ही है ये दो चार दिना। बिल्कुल, इन दो चार दिनों में हमने हंसी खुशी से प्यार मोहब्बत से सभी के साथ रहना है। गीत संगीत का हमारा मनोरंजन जो है वो बना हुआ है, और मनोरंजन का साधन हमेशा से रहेगा। इसमें चाहे लोकगीत हों, हिंदी गाने हों, पंजाबी गीत हों, कव्वालियाँ हों या गज़लें। गज़लों की बात अगर हम करें तो अपने जज्बातों को अल्फाजों में पिरोने की कला है गज़ल। गज़ल वो होती है जो रूह में उतर जाए। ऐसी ही रूहानी आवाज़ के मालिक मशहूर गज़ल गायक मेहंदी हसन 13 जून यानी आज के दिन दुनिया को अलविदा कह गए। उस्ताद मेहंदी हसन को शहनशाह गज़ल कहा जाता है। भारत के राजस्थान में जन्मे और बाद में 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय 20 साल के मेहंदी हसन अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। अपनी मखमली आवाज़ और शास्त्रीय संगीत को बेहतरीन समझ से उन्होंने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उनका परिवार संगीतकारों का घराना कलावंत घराना था। उनके पिता उस्ताद अजीम खान और चाचा उस्ताद इस्माइल खान ने उन्हें मात्र 8 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। तमाम संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी रियाज को जारी रखा। 1957 में रेडियो पाकिस्तान कराची में एक ठुमरे गायक के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी गायकी में ध्रुपद, ठुमरी और ख्याल का अद्भुत मिश्रण उन्होंने पेश किया। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा तमगे इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल ए इम्तियाज जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 1989 में उन्हें भारत की ओर से सहगल अवार्ड प्रदान किया गया। उनकी सबसे अमर गज़लें हैं रंजिश ही सही, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हूलों में रंग भरे और जिंदगी में सभी प्यार करते हैं। तो चलिए उनकी गाई एक खूबसूरत सी गज़ल आपको सुनवा रहे हैं, और प्रोग्राम में आगे जानकारियों का खजाना हम बिल्कुल लुटाएंगे। बने रहिए सुबह सुहानी कार्यक्रम में आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

सुबह के 7:20 हुए हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सुहानी। शब्दों को गीतों में पिरोना एक अद्भुत कला है और ऐसी ही कला के मालिक थे प्रेम धवन, जिनका आज जन्मदिवस है। हिंदी सिनेमा के एक महान बहुमुखी गीतकार, संगीतकार और कोरियोग्राफर वे थे। उन्हें मुख्य रूप से उनके अमर देशभक्ति गीतों और क्रांतिकारी रचनाओं के लिए याद किया जाता है। 13 जून 1923 को अम्बाला हरियाणा में वे पैदा हुए। उनके पिता लाहौर की जेल में वार्डन यानी जेल अधीक्षक थे, जहां उनकी मुलाकात कई स्वतंत्रता सेनानियों से हुई, जिसने उनके भीतर देशभक्ति की भावना मजबूत की। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर से संगीत और पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। लाहौर में पढ़ाई के दौरान वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और बाद में मुंबई आ गए, जहां वे IPTA यानी इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का हिस्सा बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1946 में बनी फिल्म धरती के लाल से की थी। लगभग 300 फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे और 50 से अधिक फिल्मों में संगीत भी दिया। उनके लोकप्रिय गीतों में मेरा रंग दे बसंती चोला 1965 की फिल्म शहीद से है और ए वतन सरफरोशी की तमन्ना आदि इसी फिल्म के गीत हैं। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया है। भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री 1970 में उन्हें दिया गया। फिल्म नानक दुखिया सब संसार के सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए 1971 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। तो चलिए उन्हीं का एक गाना आपको सुनवाते हैं और कार्यक्रम आगे हमारा जारी रहेगा। सुबह सुहानी सुनते रहिए 103.4 MHz पर।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया है, इस कार्यक्रम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। श्रोताओ, अब बात करेंगे इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 13 जून यानी आज ही के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। एल्बिनिज्म माता पिता से विरासत में मिलने वाला एक जन्मजात विकार है। मेलेनिन की कमी के कारण इससे प्रभावित व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों का रंग हल्का या सफ़ेद हो जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को मानव अधिकारों के सम्मान उनको दिलवाना है और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त इसमें किया जाता है। इसके साथ एल्बिनिज्म के बारे में समाज में फैली हुई भ्रांतियों और मिथकों को भी दूर करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रहता है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी जानी मानी फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज का वर्तमान कल का इतिहास होता है और कुछ ही ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं आपके संग साझा करेंगे जो आज के दिन यानी 13 जून के दिन हुई। सन 1290 में खिलजी प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसके साथ ही गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ। लंबे समय से अफगानिस्तान में बसे खिलजी कबीले ने 1320 तक शासन किया था। सन 1731 को स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1940 को देश के महान क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन में फांसी दी गई। उन्हें जनरल डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया। जनरल डायर जलियांवाला बाग की त्रासदी के समय पंजाब का गवर्नर था। 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो आज ही के दिन पहुंचे थे। सन 2002 को अमेरिका ने एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि से खुद को आज ही के दिन अलग किया था।

0: सुबह सुहाने कार्यक्रम में अब वक्त है आज के खास समाचारों का।
1: खबर आज की।
0: स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास देश प्रगति की ओर नई दिशा दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की और अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट संघ स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

0: इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

हिमाचली की तो लोक संगीत से सजा ये कार्यक्रम हर बार की तरह रहता है और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राकेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू। SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa. कार्यक्रम शुभप्रयाग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश लीजिए सुनिए, ओम प्रकाश और साथी की गाई हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
5: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
7: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
8: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
5: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
9: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
7: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
9: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत

0: साल 1980 की सुपरहिट फिल्म कर्ज का एक बेहद लोकप्रिय सदाबहार गीत आपने सुना, जिसे दिग्गज गायक मोहम्मद रफी ने अपनी जादुई आवाज से सजाया था। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: तुझे प्यार करूंगा।
0: अब लीजिए सुनिए प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो

0: श्रोताओं, कार्यक्रमों से संबंधित एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 14 जून 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा थायराइड और आपकी सेहत। इससे संबंधित अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित डॉक्टर सुजीत रैना, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 14 जून 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 01892224391। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो आरोग्यम कार्यक्रम में फ़ोन करना ना भूलें। सूचना समाप्त हुई।
1: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।
7: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
8: जहां संवरेगा सखियों का आज और कल।
9: जानकारी, मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
8: जहां आप नहीं रह पाएंगे हमसे दूर।
7: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
9: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
8: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
9: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
8: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
7: दोपहर 12:30 पर
9: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।
0: कार्यक्रम गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में कुली फिल्म का गाना आप आपको सुनवा रहे हैं। शबीर कुमार और आशा भोसले की आवाजें इस गाने में हैं।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार।

0: at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये बेहतरीन गाना दिग्गज संगीतकार आर डी वर्मन द्वारा गाया और रचित किया गया। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे और स्क्रीन पर यह शानदार आइटम नंबर था जिसमें मशहूर अभिनेत्री हेलन और अमजद खान नजर आए थे।

कहानी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। सोच से संभावनाओं का सफर हौसलों से होकर गुजरता है। गीतांजलि कार्यक्रम में एक बार फिर हाजिर हैं गीत संगीत के साथ, और आज का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त पवन शर्मा के साथ।

दोस्तों, हमारी सोचने समझने की क्षमता हमारे हौसलों पर निर्भर करती है। जितना हमारा हौसला बुलंद होगा, हमारी सोच भी उतनी ऊंची होती जाती है। वैसे आपको ज़्यादा सोचने की समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी सोच को विराम देकर मनोरंजन का सुहाना सा सफ़र हम तय कर रहे हैं, जहां हम सुनेंगे, गुनगुनाएंगे कुछ मस्ती भरे गीत।

फिलहाल हमने प्रोग्राम शुरू किया है, कहीं जाने का नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि मनोरंजन का ये सफर बिल्कुल जारी है। 103.4 मेगाहर्ट्ज इस वक्त आपने ट्यून इन किया है, सुबह के 9:12 और 22 सेकंड।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9:18 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और हम लौटेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद 9:30 पर। मनोरंजन का ये सफ़र जारी रहेगा और प्रादेशिक समाचारों के लिए करना होगा आपको कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज अपने शिमला प्रवास के दूसरे दिन मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को मजबूत कर रही है केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना। ऊना जिले के 81 स्वास्थ्य संस्थानों को मिला सम्मान। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव संपन्न। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला आज। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने 2 दिवसीय शिमला प्रवास के दूसरे दिन 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज सुबह चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। बाद में जेपी नड्डा होटल हॉलीडे होम शिमला में मीडिया से रूबरू होंगे और केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। वे दोपहर में शिमला के जाखू मंदिर व तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ग्राम पंचायत शोगी के परमार वन में वृक्षारोपण अभियान में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा वे गोरखन वन टनल नंबर 1 से आनंदपुर साहिर में प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। योजना के तहत इस वर्ष ऊना जिले के विभिन्न वर्गों के 81 चिकित्सा संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें नगद इनाम राशि भी शामिल है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: इस वर्ष ऊना जिला ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला के 81 सरकारी चिकित्सा संस्थानों को प्रदेश स्तरीय कायाकल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि ये पुरस्कार इन संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता तथा मरीजों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोहा ने अपने वर्ग में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि सिविल अस्पताल बंगाणा राज्य में तीसरे स्थान पर रहा। ग्राम स्तरीय संस्थानों के वर्ग में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनकौर ने प्रदेश में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को अपने वर्ग में दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
2: शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल संपन्न हो गया। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतिम संध्या पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय के नाम रही, जिसमें दोनों कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुति से रिज मैदान पर मौजूदा हजारों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शिमला ग्रीष्मोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताएं स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में ग्रीष्मोत्सव में आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रसारित की गई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला के भुंतर मणिकरण मार्ग पर सरसाड़ी के समीप कल एक निजी वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर अवस्था में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पर्यटक पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे और मणिकरण से वापस आ रहे थे। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज HPCA स्टेडियम क्रिकेट धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मुकाबला 1:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले से एक दिन पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास कर पिच, मौसम और आउटफील्ड की परिस्थितियों का आकलन किया। धर्मशाला में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। आज सुबह भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मैच के दौरान मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। धर्मशाला में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल हल्की बर्फबारी का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने आगामी 24 घंटों तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है।
4: 13 और 14 जून संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडरस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल की, और यहाँ पे क्लाउडी में हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में ही, जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री की गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चराई नीति हरियाली भी खुशहाली की सोच को साकार करती है। ये नीति हमारे चरागाहों की रक्षा करती है, पशुपालक परंपराओं का सम्मान करती है और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। और अभी एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी का शीर्षक है, धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट मुकाबला आज 1:30 बजे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज क्रिकेट का महासंग्राम, युवा टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान की चुनौती। हिमाचल दस्तक लिखता है, वनडे सीरीज धर्मशाला में आज भिड़ेंगे करेंगे भारत अफगानिस्तान। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के मेधावियों को सीएम आज करेंगे सम्मानित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, फसल बीमा की 10% हिस्सेदारी से हिमाचल का इनकार। मौसम पर दैनिक भास्कर का कहना है, 24 घंटे में सामान्य से 598% ज्यादा बारिश, आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी। दिव्य हिमाचल लिखता है, सिरमौर शिमला में बाढ़ का खतरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज अपने शिमला प्रवास के दूसरे दिन मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को मजबूत कर रही है केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना। ऊना जिले के 81 स्वास्थ्य संस्थानों को मिला सम्मान। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव संपन्न। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला आज। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गीत।

क्या कहता है आज का दिन? जी बिल्कुल, कुछ अलग तरह से बीता है सबका हर दिन। आज आप दिन में क्या खास करने वाले हैं? वैसे डेली रूटीन से हटकर कुछ किया जाए तो मन में ताजगी बनी रहती है, कुछ अलग सा सुकून मिलता है। गानों से भरी सुबह, ताजगी से भरी सुबह आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हर बार हमारी ये कोशिश होती है कि मनोरंजन गीत संगीत आप तक पहुंचाया जाए, तो मनोरंजन का ये सफर जारी रखते हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
6: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: सफर कोई भी हो, एक अच्छा साथी, एक अच्छा हम सफर हमें मिल जाता है तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। नहीं तो अकेले 1 घंटा बिताना सारे दिन जैसा लगता है। वैसे दोस्तों, आप इस वक्त अकेले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि आप बने हैं FM धर्मशाला के साथ, जिसमें गीतांजलि प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हैं।

हाजिर हो चुकी हैं। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे गीतों का कारवां कुछ ही पलों में, और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके पास मैं छोड़े जा रही हूँ। आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार का, प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह, और प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ पवन शर्मा। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ये रही आपके रेडियो सर्स पर।

दीवाना फिल्म का गीत यशोदा इस समय आप सुन रहे हैं। गीतकार है कुमार शानू और अलका याग्निक।

श्रोताओं, इस गीत को आपने सुना। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस गीत को। इस गीत के गीतकार है फैज़ अनवर।

श्रोताओ, गीतों का कारवा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो लीजिए, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस गीत को। इस गीत के गीतकार है समीर। और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: श्रोता, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम गीतों का कारवा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गीतों का कारवा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से।

दिल चाहता है फिल्म से इस गीत को आप सुन रहे हैं। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। गीतकार हैं जावेद अख्तर। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉयर ने।

गीतों के कारवां में श्रोताओं आज बस इतना ही। अगली बार नए गीतों के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। पहाड़ों के सुर लेकर हाजिर हुई है फिर से आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, पहाड़ों की बात हो रही है। पहाड़ों की शान ही निराली होती है और लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन्हें लगता है हम स्वर्ग में रह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्वर्ग के पास रहते हैं। खासकर गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बहुत सारे लोग पहाड़ों की ओर आते हैं, कुछ छुट्टियां बिताने और कुछ सुकून प्राप्त करने के लिए। तो आइए थोड़ा सा सुकून हम भी लेते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत विक्रांत की आवाज़ में।

श्रोतो, पहाड़ों के सुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। पहाड़ों की बात आते ही थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है, क्योंकि गर्मी बहुत आजकल निचले इलाकों में रहती है, तो बहुत सारे हमारे श्रोता जो गर्मी की वजह से बेहाल होते हैं पहाड़ों की ओर रुख करते हैं और हमारे यहाँ धर्मशाला में पहुँचते हैं और पहाड़ों की गोद में सुकून बिताते हैं। जी हाँ श्रोताओ, बहुत सारा सुकून यहाँ मिलता है, खुशी मिलती है, ठंडी हवाएं मिलती हैं और कुछ पल जो है लोग यहाँ बिताकर जाते हैं। खैर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा है और स्वर्ग के पास ताज़ी हवाओं में प्रकृति के नज़दीक वो लोग रहते हैं। तो श्रोताओ, थोड़ा सा अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि हमें आपका मनोरंजन भी करवाना है, तो बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और पहाड़ों के सुरों के थोड़ा सा करीब फिर से आपको लिए चलते हैं। श्रोताओ, धीरे शर्मा की आवाज में सुन रहे हैं आप इस

श्रोताओं, पहाड़ के सूर्य समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। पहाड़ प्रकृति की अद्वितीयता का प्रतीक है। इसमें ऐसी शानदारता और मानवता को आकर्षित करने वाली शांति होती है जो हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी हाँ श्रोताओं, थोड़ा सा हम फिर से रुख करते हैं हिमाचली गीत की ओर। तो आइए सुनील राणा की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको अगला प्यारा सा हिमाचली गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa. चौदह इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर, तो आइए फिर से आपको पहाड़ों के और हम लिए चलते हैं। पहाड़ों की ओर जाकर हमें स्वच्छता का बहुत सा आभास होता है। ताज़ी हवा बहुत ही अच्छी और मन को मोह लेने वाली होती है। बहुत सारी जिम्मेदारियों से फ्री होकर हम घूमने फिरने निकलते हैं और ज़िंदगी को कुछ पल के लिए जी भी लेते हैं। तो थोड़ा सा और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गीत संगीत होते हैं, चाहे वो लोकल भाषा में हो या हिंदी में हो, किसी भी तरह के गीत हो, मन को बहुत सा सुकून देते हैं। तो पहाड़ों के साथ साथ थोड़ा गीतों का भी सुकून हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए सुनाते हैं आपको अगला हिमाचली गीत। करनैल राणा की आवाज में सुन रहे हैं आप इस हिमाचली गीत को।

श्रोताओ, पहाड़ों के सुर में एक और सुर मिला देते हैं और सुनवाते हैं मीनाक्षी देवी की आवाज़ में हिमाचली गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व के कारण आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझ रहा है और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। अपने दो दिवसीय शिमला प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नड्डा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में एक नई सोच का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि पहले स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार की उदासीनता देखने को

0: मिलती थी वह अब बदल चुकी है। आज समाज के सभी वर्ग, युवा, महिलाएं और आम नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि स्वच्छता अब केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व बन चुकी है। दोपहर में जेपी नड्डा होटल होलीडे होम शिमला में मीडिया से रूबरू होंगे और केंद्र की मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। राजनाथ सिंह ने कल हैदराबाद में कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति के लिए शक्ति आवश्यक है और आत्मनिर्भरता उस शक्ति का सबसे विश्वसनीय आधार है। रक्षा मंत्री युद्ध की तेजी से बदलती प्रकृति के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सुगमता और प्रतिरोध क्षमता के महत्व पर बल भी दिया। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। योजना के तहत इस वर्ष ऊना जिला के विभिन्न वर्गों के 81 चिकित्सा संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें नकद इनाम राशि भी शामिल है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: इस वर्ष ऊना जिला ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला के 81 सरकारी चिकित्सा संस्थानों को प्रदेश स्तरीय कायाकल्प पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि ये पुरस्कार इन संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता तथा मरीजों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोहा ने अपने वर्ग में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि सिविल अस्पताल बंगाणा राज्य में तीसरे स्थान पर रहा। ग्राम स्तरीय संस्थानों के वर्ग में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनकौर ने प्रदेश में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को अपने वर्ग में दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल संपन्न हो गया। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतिम संध्या पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय के नाम रही, जिसमें दोनों कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुति से रिज मैदान पर मौजूदा हजारों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। शिमला ग्रीष्मोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताएं स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में ग्रीष्मोत्सव में आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रसारित की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला आज HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले से एक दिन पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास कर पिच, मौसम और आउटफील्ड की परिस्थितियों का आकलन किया। धर्मशाला में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। आज सुबह भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मैच के दौरान मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। धर्मशाला में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल हल्की बर्फबारी का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने आगामी 24 घंटों तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की भावना जताई है।
2: 13 और 14 जून की संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है, फरसोगर, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडरस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल, यहाँ पे क्लाउडिनेशन हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में ही, जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री की गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं गूंज पहाड़ों की।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, पहाड़ों के सूर्य समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आपने सुना कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का अंतिम पेशकश। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

अभी आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर और सोनू निगम ने।

सरफरोश फिल्म से ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिल है के मानता नहीं, इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में। धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जान तेरे नाम इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए, कुमार सानू और साथियों का गाया हुआ। संगीत नदीम श्रवण का है।

दोपहर के 12:18 और 46 सेकेंड आपने ट्यून किया है 103.4 MHz। प्रोग्राम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए। अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की युगल स्वरों में लीजिए सुनिए सड़क फिल्म का ये नगमा, संगीत रवि का है।

सैनिक साथियों, लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश दामिनी फिल्म से। कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वर इस फिल्म के गीत में हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी जानी पहचानी सखी सुमन। सभी सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है और सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। सखियों, शनिवार का दिन है और हम आज करेंगे माँ की पाठशाला पर बात। माँ की पाठशाला में बहुत सारी बातें जो हैं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, खैर हमने भी सीखी हैं और अब समय हमारा आ गया है कि हम अपने बच्चों को वो बातें सिखाते हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई हैं। माँ की बात हो रही है श्रोताओं, सखियों तो सर पर हाथ जो फेरे तो हिम्मत मिल जाती है और माँ एक बार मुस्कुरा दे तो कहते हैं जन्नत मिल जाती है। बिल्कुल सही बात कही है श्रोताओं कहने वाले ने। और वैसे भी कहा जाता है कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। माँ के घर पर रहने से पूरे घर पर रौनक होती है और माँ अगर घर पर ना दिखे या ना मिले तो पूरा घर उदासी से भर जाता है। माँ का नाम सुनते ही जहन में एक बहुत ही सुकून सा जगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है। और वैसे भी श्रोताओं कहते हैं कि पेरेंट्स यानी माता पिता हमारे घर के जो हैं ताले होते हैं, अगर वो घर पर ना हो तो हमारा घर जो है सूना लगता है और उनके रहने से हमारे घर पर खुशियां होती हैं। माँ की पाठशाला की श्रोताओं बात हो रही है तो माँ की पाठशाला जिसे हम माँ के संस्कार शाला भी कहते हैं, माँ की पाठशाला में बच्चों का विकास होता है। नैतिक शिक्षा और संस्कार इसमें शामिल रहते हैं। तो सखियों बहुत सारी बातें माँ की पाठशाला पर आज हमने करनी है और माँ की बात हो रही है तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें इस समय दिमाग में चल रही हैं वो आपसे करनी हैं। तो बातों के साथ साथ गीत संगीत भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि संगीत अगर कार्यक्रम में हो तो हमारा कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा लगता है और अगर कार्यक्रम में गीत ना हो तो थोड़ा सा कमी लगती है। तो इस कमी को पूरा करते हैं और आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रही हैं सुनो सखी, और सुनो सखी कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं माँ की पाठशाला पर। सखी, माँ की पाठशाला में बहुत सारी बातें हम सीखते हैं और सीखनी भी चाहिए। कहते हैं जिंदगी की पहली शिक्षक माँ होती है, जिंदगी की पहली दोस्त माँ होती है, और जिंदगी भी माँ है, जिंदगी देने वाली भी माँ ही होती है। दुनिया में हमें लाती है और बहुत कुछ हमें सिखाती है। और साथ ही साथ माँ की पाठशाला की और थोड़ी सी हम बढ़ते हैं और माँ की पाठशाला की भी बात करेंगे, माँ की करेंगे, क्योंकि माँ शब्द जो है हमारे जहन में आते ही एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में उमड़ने लगती हैं। सखियों, माँ केवल एक शब्द नहीं है बल्कि सृष्टि का सबसे पवित्र, ममता का सागर और ईश्वर का दूसरा रूप माँ होती है। बच्चे की पहली गुरु, बच्चे की पहली दोस्त और जीवन भर की मार्गदर्शक जो होती है हमारी माँ होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन परिवार को समर्पित कर देती है। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है और बच्चे को बोलना, चलना, अच्छे संस्कार देना और हर सुख दुख में एक दोस्त के जैसे हमेशा खड़ी रहती है। माँ का प्यार बिना किसी शर्त के रहता है। वे खुद तकलीफ में रहती है पर बच्चे की ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करती है, यानी खुद गीले में सोकर बच्चे को सुखी जीवन देती है, सूखी जगह में सुलाती है। जी हाँ सखी, इसी तरह से होता है ना हम सभी के साथ। हम सभी को जो है अपनी माँ से प्यार मिला है और हम सभी उस अब अपने पेरेंट्स को याद भी करते हैं। हम में से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनके सर पर हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स सर पर नहीं हैं, मगर क्या करना, उनकी प्यारी यादें, प्यारी मुस्कुराहट, प्यारा मार्गदर्शन जो है हमारे साथ है। उन्होंने आज हमें इतना लायक बना दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। हमें से बहुत सारे श्रोताओं इस तरह के बच्चे भी हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स यानी छोटे थे, जब बहुत छोटे थे, गोदी में लेने वाले थे, उनको छोड़कर चले गए हैं। खैर, हम उनमें से बहुत ही लकी हैं कि हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं, दुनियादारी सिखा कर गए हैं, जिम्मेदारियाँ सिखा कर गए हैं कि किस तरह से ज़िंदगी का सफ़र तय करना है। जिंदगी के सफर में श्रोताओं बहुत सारे से उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आते हैं, कभी धूप आती है तो कभी छांव आती है, कभी जो है बहुत कुछ जीवन में हम देखते हैं। तो श्रोताओं, बातें तो हमारी यूं ही जारी रहेगी सखियों, और बातों के साथ साथ फिर से थोड़ा सा रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत को। तो आप जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

जी हाँ श्रोता सखियों, ठीक इसी तरह से होता है कि संध्या होते तक अगर हमारे बच्चे घर ना आए या हमें ना दिखे तो हमें बहुत फिक्र होने लगती है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। लुका छुपी इसी तरह से बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच में चली रहती है, लेकिन लुका छुपी कभी कभार ऐसी हो जाती है कि ऐसे लुका छुपी के बीच कई बार पेरेंट्स कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। खैर श्रोताओं, फिर से थोड़ा सा हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला गया, लेकिन फिर से हमें अपने विषय की ओर, अपने कार्यक्रम की ओर आना है और अपनी माँ को याद कर रहे हैं आज हम। वैसे तो माँ को हर दम याद किया जाता है, माँ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जहन में हमेशा रहती है, हमारे दिल के किसी कोने में सेफ है उसकी यादें। और हर समय जब भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ चलते फिरते उठते बैठते, हमें कहीं ना कहीं अपनी माँ की यादें आ ही जाती हैं। माता पिता एक हमारी ज़िंदगी के ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। आज हम अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये माता पिता की दी हुई है, वही हमें इस संसार में लाए हैं, उन्हीं की बदौलत हम इस प्यारे से जीवन का आनंद भी ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्यारे से जीवन को। तो श्रोता सखियों, कहते हैं हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती बनने के लिए, हज़ारों बूंदे चाहिए समुद्र बनने के लिए, पर माँ अकेली ही काफ़ी होती है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। जी हाँ, माँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आए, खूब सारी जो है अपनी ज़िंदगी में हर पड़ाव को वो देखे। तो सखियों, माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, परिवार का आधार होती है, माँ वे धागा।

बिना बच्चे की पढ़ाई होना बहुत ही मुश्किल होता है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना खाना, हर चीज़ वो सिखाती है। माँ अपने बच्चे का वर्तमान में जीना सिखाती है। एक माँ बच्चे को बाहर की दुनिया के लिए तैयार करती है कि बाहर तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ मदद करने वाले तो कुछ मुश्किलें खड़ी करने वाले भी। श्रोता सखियों, हमारे जीवन में आते हैं, और माँ बच्चे को अपने ऊपर भरोसा रखना भी सिखाती है, और सिखाती है कि ज़िंदगी में हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी मंजिल पाने के लिए खुद पर भरोसा रखना है। माँ की सीख जो है हर समय हमारे काम आती है, और ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा होता है। इसमें बहुत कुछ हम दूसरों से सीखते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो हमें माँ सिखाती है। तो माँ की पाठशाला में बेटियाँ जो है, बेटियों के ख़ास तौर पर बात करें, क्योंकि कार्यक्रम जो है हमारा महिलाओं के लिए है, तो बेटियों की बात करें तो माँ जो है अपनी बेटी को हर छोटी बड़ी चीज़ सिखाती है। सबसे पहले जब बेटी छोटी होती है, स्कूल जाने वाली होती है, तो उसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, अच्छी ड्रेस पहनना, अच्छे कपड़े पहनना सिखाती है। उसके बाद बहुत सारी आजकल के समय की बात करें तो गुड टच और बैड टच करना भी बेटियों को सिखाया जाता है, क्योंकि हमारी दुनिया जो है बहुत अजीब है। इसमें बहुत सारी ऐसी नज़रें होती हैं जो कहीं ना कहीं छोटी बेटियों को भी नहीं छोड़ती हैं। और आजकल आए दिन अखबार पर या न्यूज़पेपर पर, टीवी पर हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में माँ की पाठशाला, माँ के द्वारा दी गई शिक्षा जो है बेटियों के बहुत काम आती है। माँ हमेशा अपनी बेटी को सुरक्षित रखती है। जैसे यूँ कह सकते हैं कि एक मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को समेट कर बैठती है, ठीक उसी तरह से माँ भी अपने आँचल में अपने बच्चों को समेट कर रखती है कि किसी तरह से उन्हें परेशानी ना आए। तो ज़िंदगी का सफ़र थोड़ा सा लंबा होता है, तो इस समय हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, और कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो छोटी जो हमारी बहनें हैं वो तो सीख ले सकती हैं, और खैर हमें भी बहुत सारी सीख कई बार छोटों से भी मिल जाती है। ज़िंदगी के सफ़र में कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो उसे ज़रूर हमें ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ माँ की पाठशाला की बात और भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में रुक लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ सखियो, जब भी हमें कभी अंधेरे से डर लगता है या लगता था, तो माँ हमारी हमेशा हमें ये बताती थी कि कुछ नहीं होता है, डर नहीं होता है, इस डर को अपने दिल से हमें बाहर निकालना चाहिए। खैर, माँ अपने बच्चों को हर समय सुरक्षित रखती है, सुरक्षित रहने का एहसास करवाती है। और माँ की बात हम कर रहे हैं तो सखियो, माँ की गोद को पहली पाठशाला माना जाता है। बच्चे के जन्म से ही माँ शिक्षा का आरंभ करती है, हर तरह से उसे बताती है। और आजकल की बात करें तो हमारे जो देश की बेटियाँ हैं उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया है, तो वो नाम कहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ है? माँ की शिक्षा से, माँ के संस्कारों से। माँ ने उन्हें आज इतना शिक्षित किया है कि आज वो देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। हर जगह हम देखते हैं, टीवी की बात की जाए, सिनेमा की बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें बेटियाँ हमारी जो है आगे बढ़ रही हैं। कोई समय था पर्दा प्रथा हुआ करती थी, उन्हें घर के अंदर ही रखा जाता था, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज वो आगे निकल रही हैं। जैसे आपने चक दे इंडिया फिल्म में भी देखा होगा कि हमारी बेटियां जो हैं आगे निकल रही हैं, खेल कूद पढ़ाई के साथ साथ कर रही हैं और वहां भी अपना नाम कमा रही हैं। तो सखियों, बातें तो बहुत सारी होती हैं आपके साथ करने के लिए, लेकिन समय हमारे पास कम होता है, तो जो बातें रह गई हैं वो अगली बार आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। ये गीत माँ से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा माँ को फिर से याद कर लेते हैं।

जी हाँ श्रोता सखियों, आज भी हम कहीं चले जाएं या कहीं का खाना खाएं तो माँ के हाथों का स्वाद ही याद आता है और माँ का बना खाना ही हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। सभी लगता है कि उस खाने में कहीं ना कहीं देसी घी डला हुआ है। माँ के हाथों का स्वाद और प्यार ही इसी तरह से होता है। तो सभी आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार नई बातों नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है अंकित धीमान ने। प्यारी सखियों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में

0: खोई 30 एमकेआई सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a 6-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi says India's youth are marking their mark across various sectors from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi emphasized that India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti and that too from smaller towns and villages. He also lauded the youth for bringing immense glory to the nation in the field of sports and for contributing to various areas that will shape the future of India and the world. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic as for the first time, women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said it is not only a milestone in the history of India's defence forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
2: I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a social media post, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker M.T. Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The Enforcement Directorate conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. Iran has said it will not sign a final peace agreement with the United States to end the months-long conflict unless its key conditions are met, despite reports that both sides are close to reaching a preliminary deal. Speaking to Iran's state broadcaster, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the text of a memorandum of understanding had been finalized and could be signed digitally in the coming days. And that is the end of this news bulletin.
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
4: और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में, और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा

एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हालत ख़राब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना ये है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा, जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफ़र की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना। और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज़ कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नज़र आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नज़र आते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है। बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफ़ी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नज़र आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नज़र आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नज़र आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नज़र आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई। पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतज़ार था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मज़ेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी, क्योंकि मेरा हम सफ़र इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आँखों पर
प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहाँ प्रेरक चीज़ें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और एकदम से जब गाना ख़त्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे ख़त्म हो गया। पर बहुत मज़ा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नज़रों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ, और आपको वहाँ वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती हैं कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर का बरस गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतज़ार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफ़र कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है। यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज़्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूँ। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज, फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतज़ार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीज़ें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय ये मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसों भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है। और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

0: ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी हैं।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीले सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहें फैला लें और जितना चाहें सिकोड़ लें। चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए, जैसे ही वो मुड़ती है कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है, हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते, उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल The Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
7: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार

0: सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना, और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास, पुनर्निर्माण और जन कल्याण के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इन अवसरों को जनहित में बदलने में विफल रही है।
4: मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, यहाँ एक धारणा बनाई जा रही है और सुखविंदर जी की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने बढ़ चढ़कर हिमाचल को हमेशा समर्थन दिया है, आर्थिक सहायता दी है और जो ड्यू नहीं है वह भी देने का प्रयास हिमाचल को किया गया। भारत सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है।
3: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में आज प्रशासनिक अव्यवस्था, निर्णयहीनता और नीतिगत अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्य सचिव और DGP सहित मुख्यमंत्री भी अतिरिक्त चार्ज पर हैं और सरकार दिल्ली से चल रही है।
4: ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, DGP एडिशनल चार्ज पर है, वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है, ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, यहाँ छोड़ करके जाना चाहते हैं।
3: नड्डा ने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनमत है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देशव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। नड्डा ने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझ रहा है और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध जाखू मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास व सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश को निरंतर आगे बढ़ा रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन योग और ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वे आज लुधियाना में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के दौरे के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग और ध्यान

0: केवल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि संतुलित सकारात्मक और सार्थक जीवन जीने के लिए भी अत्यंत प्रभावी साधन है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग ध्यान और समग्र कल्याण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। धर्मशाला में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत के विकास का आधार आधारभूत संरचना और वाचक हैं पूनम शर्मा।
0: आधारभूत संरचना आज पूरे देश में रोजमर्रा की जिंदगी और अनुभवों को आकार देती है। रेलवे, सड़कें, हवाई अड्डे, डिजिटल नेटवर्क, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों ने जरूरी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है। इन प्रणालियों ने लोगों के यात्रा करने, डिजिटल रूप से जुड़ने और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के तरीके को भी प्रभावित किया है। 2014 के बाद से आधारभूत संरचना विकास तेजी से व्यापकता एकीकरण और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर केंद्रित हो गया है। इस अवधि के दौरान एक बड़ा बदलाव आधारभूत संरचना नियोजन का एकीकरण था जो पहले की खंडित परियोजना क्रियान्वयन की प्रथा के उलट था। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक ढांचागत निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। सागरमाला, भारतमाला, पीएम गति शक्ति, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना और उड़ान जैसी प्रमुख परियोजनाओं ने अवसंरचना तक पहुंच का विस्तार किया। इन पहलों ने ढांचागत विकास को घरेलू कल्याण, आर्थिक अवसर और क्षेत्रीय विकास से जोड़ा। परिवहन नेटवर्क आर्थिक एकीकरण की रीढ़ की हड्डी है। राजमार्गों और रेल मार्गों से लेकर हवाई अड्डों, जलमार्गों और शहरी परिवहन प्रणालियों तक परिवहन के विभिन्न साधनों में किए गए निवेश ने संपर्क को और मजबूत किया है। ये नेटवर्क मिलकर एक अधिक सुगम और एकीकृत गतिशील तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में 2014 से व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिससे परिचालन में क्षमता, दक्षता, सुरक्षा और सेवा वितरण में सुधार हुआ है। भारत की स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें बेहतर गति, आराम और ऑनबोर्ड तकनीक प्रदान करके आधुनिक रेल यात्रा को और भी बेहतर बनाती हैं। अप्रैल 2026 तक देश भर में 162 वंदे भारत सेवाएं परिचालन में हैं। साल 2014 से भारत के सड़क नेटवर्क में कई गुना वृद्धि हुई है जिससे विभिन्न क्षेत्रों और आर्थिक गलियारों में संपर्क बेहतर हुआ है। राजमार्गों, सड़कों और बाईपास के लिए नीतियों द्वारा समर्थित पहलों का फोकस उच्च गति कॉरिडोर विकास, आर्थिक नोड कनेक्टिविटी और शहरी भीड़भाड़ को कम करने पर रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़क संरचना के माध्यम से ग्रामीण संपर्क को बदल दिया है जिससे बाजारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार हुआ है। इस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं ने दुर्गम भूभागों और रणनीतिक क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाया है। डिजिटल प्रणालियों ने हवाई अड्डों पर यात्रियों के अनुभव और परिचालन दक्षता में सुधार किया है। डिजी यात्रा जैसी पहलों ने चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से निर्बाध और संपर्क रहित यात्रा को सक्षम बनाया है। 2015 में गगन के संचालन से जो विश्व की पहली भूमध्य रेखीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, नेविगेशन सटीकता और उड़ान सुरक्षा में वृद्धि हुई है। ये बेहतर स्थान सटीकता के माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया और खोज एवं बचाव कार्यों में भी सहायता करती है। विमानन क्षेत्र में विस्तार ने पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों सहित दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच में सुधार किया है, साथ ही पर्यटन, व्यापार और आवागमन को भी बढ़ावा दिया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। मेट्रो के निर्माण की रफ्तार में भी तेजी आई है। पिछले 12 वर्षों में देश भर में मेट्रो विस्तार में लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निवेशकों और उद्यमों के लिए औद्योगिक आधारभूत संरचना में पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाया है। अवसंरचना आधारित औद्योगिक विकास ने विनिर्माण गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को बेहतर बनाया है। इसने द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में निवेश, रोजगार सृजन और विनिर्माण गतिविधि के विस्तार को समर्थन दिया है।
1: भारत के विकास का
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजाय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं। समेलाल घीवर, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एल पी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: तुझको बिठा कर। ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाहेगी
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, भीष्म, भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझमें विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतानंदकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराज

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: धृतराष्ट्र।
1: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
0: क्या?
1: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
0: क्या हुआ, गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
1: महाराज,
0: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या?
1: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गंधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य। ओह, असहनी है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: पगली कहेगी, क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कांधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत हुआ।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
2: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
3: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
2: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
3: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
2: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
3: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
2: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
3: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
2: महाराज,
4: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
3: कहो सूत।
4: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
2: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? प्रबल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर क्या है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदलकर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: हो,

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 4 बजे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
3: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
4: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं। डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप, टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
5: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
4: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: ये अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत